0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN.
1: दवा लगाये बना दे ते साया है.
2: लुकाया मारे वेड़े ने ऊने. दुक्की की वाले मरे मेमोरी लॉस्ट कीला.
3: मेमोरी लॉस्ट? कौन द डॉक्टर? याद सुनने दे.
2: मम्मे किधी के बुन्ने हैं या सीनी वेड़े ने मुकुट आते पर ये वेड़े करने हैं या माता?
4: Oh my God!
3: सुपर डॉक्टर ने डॉक्टर हरी तम कील दिए नाले
5: हिना वेवी सिंधु हन्ने एफए मानु तुनाई दशम पाहा एफए मानु तुनाई दशम हत हैंडे भी हतर वेदी ट्यून करल दिया गन
6: इवनिंग ड्राइविंग चामित एंड चारो
7: මාක්ස්මන් සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් ගෙන්වා දෙත හරින දැන් නව නිමාවකින් එන ඩෝමාස් වැන්ට්‍රි වීකිටිම යන්ත්‍රයක සාදම්බර හිමිකරුවෙකු වන්න අද මම තන්න 01176 679 579

हाउसे तो नहीं बिना दिपाहे ऑल टाइम बेडशीट चामे अबे नंगा पे अंतिम बैठा यावे

न्याय सूत्र देशना पर महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशना पर अति विशेष वोकी तारका समूहयक पिरिवरा बेबलेन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिनी समस्त महा विश्वतलेम बुद्धाज्ञा चत्रेट हसु करमिनी पवत्वन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक् दृष्टिक देवीदेवताओं वहन्सेला की एल्म बेल्म हा आशीर्वाद अपेक्षा विनि एदा बुदुरजानन वहन्सेगे श्रीपाद मूलेहि गौरवाभिवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिनि महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंबतिक वेनम ए आय किसीदा अपायगामी वन्नी नेते कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाहि विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेट एलमिन सकलांतराय दुरुकुटर सित शांतिय सलसी मेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयकी सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महासमय सूत्रय सदहे सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमुरे शांत स्वामी वहन्से।